मंदिर में वो आगे को तरफ बोल भैया भैया दूसरा क्या है तेरा तपिन दिशा पाई पाई ताप वकी खत्म वक किया इतने मत कोपिन तेरा तपिन दिशा पाई पाई ताप वकी खत्म वक किया इतने को मत कोपिन

और बुसी टपे तो वो ना यों खाने का गई तेगना मैं उरी को ना नको आयो इरो या काइन दबीकन उस उस खाकी तेरे में सुसु पागोकन नो के बंगें ताई तैयार आंगो और मैं उरी ने वी ते आयो को ना मने को तंगी जमे या काइन दबीकन के उस इन खाकी तेरे में सुसु पागोकन रावा नो के बंगें ताई.